0: एक कुर्त इस क्यात की इताम एक क एक कुर्त इस क्यात की इताम एक क एक कुर्त इस क्यात की इताम एक क पत्सो सोक आग नमों बासी ए वो से ए नकब ए याका ए मुआ ए वो से ए नकब ए याका ए मुआ ए वो से ए नकब ए याका ए मुआ पत्सो सोक आग नमों बासी
1: Hey, hey, hey.